सु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गिरी राङ्नी दाठेनमुला गैन्दिरा थिङ युलुचोह रामचन्द्र पौडेल से ह्याङला सियार प्रणाली से लोबोन कादेदा दातेदा झेखेन आहिन भविष्यला चुनौती थेन अवसर दिन तयार लातोला बिसी सुङबामुला युलचोह पौडेल से पशुपति मित्र माध्यमिक लोभखाङला ब्रेचुइछा धिन्छेनला ह्वाल्डी लेङ्गो थान्सुबान चुताम सुङबाखिनला युलचोह से पोबा छ्याम ह्याङला आधारभूत तोबा से कादे दातेला भीमा ज्याबा तादोला बिचे सुङबा मुबा युलचोह पौडेल से लोभखाङ ज्ञान स्यार छोरङान छ्याम युल्ला भविष्य शोभा घेन्दुन हिनला बिचे सुङबा मुला रोङसा ब्लोन सिसिर खनाल फिजी थेन टुसु भालुरी सेङ्बा जलवायु पोबा सम्बन्धी ग्रेन स्तरीय फ्री कोभ लिडर्स इभेन्ट रिपो किनबान अस्ट्रेलियालाई औपचारिक कोरबा झिन्ना लासी तिनी नेपाल याइस्युबा मुला त्रिभुवन मोक्युल एयरपोर्ट रि तिनी साङ्गिर बोन कादेथेन लेङ्मो लासिबान ब्लोन खनालसे भालसे नोङना लाभा से कादे सोबारी अस्ट्रेलिया से करोड़ घिक से लाख घाचुई अस्ट्रेलियन डलर अनुदान पिनबा घोषणा लाभा मुलाबिची सुङबा मुबा चुङाछा रोङसा ब्लोन सिसिर खनाल थेन अस्ट्रेलियाला गभर्नर जनरल साम मोस्टिन रूपतासी लेङ्मोला सिउबा मुबा रूपतामा नेपाल थेन अस्ट्रेलिया घुङला डुचुई दिङ रेङ्बा ब्रेल्बा अस्ट्रेलियारी नेपाली डायस्पोराला रो थेन नेपाली ग्लेबोन कादेला ताम्री लेङ्मो ताबा मुबा बिसि रोङसा ब्लोन खाङसे पाङबा मुला नेपाली काङ्ग्रेसला चोहोरी गगन कुमार थापा ढासियुबा मुला काङ्ग्रेसला चुई घाँचा ग्रेन हवाल्ला तिलमा ताबा चुनावरी चोहो थापासे तोङ डु ग्यार्जा घाँसे ब्रेचुई ब्ली भोट बासी ढासियुबा खिनला बिसी निर्वाचन थुतबोन प्रेम बहादुर खड्कासे सुङबा मुला चुनावरी चोहो थापाला प्रतिस्पर्धी श्याम कृष्ण खड्किसे ग्यार्जा सोमसे निश्चुई घाँ भोट भाबा मुबा चुनावरी तोङ निसे सो चुई सोम भोट ताइ बारी गोर नाची ब्ली भोट भातार ताबा मुबा विक्रम सम्बत 2046 जन आन्दोलन ला धुरी कक्षा कुरी डोबान लाबा आन्दोलन डी पो किन्बा थापा ब्लिची दिङ लिचा काङ्ग्रेसला गोबाङ लाबारी धोस्युबा मुला चो थापा से 2046 डी बाल काङ्ग्रेसला सदस्य ग्याम ग्लेठिम यात्रा तिस्युबा मुबा नेपाली काङ्ग्रेसला छारधाम बाचो गगन कुमार थापा से मिनीला सेम ढाबा लासी पार्टीदा घाँचा बोर्बा बिसी सुङबा मुला पार्टीला चुई घाँचा ग्रेन हवाल ग्याम चोहोरी डाबा लिचा तिनी पार्टी घेजाङ सानेपारी सेङ्बा घेखोरी लेङ्मो थान्सुबान चो थापा से याङबा जिम्मेवारीदा अधिकार आताना जवाफदेहिताला रूपरी किन्बा मुला बिसी सुङबा मुबा दिम्लोन खाङसे ग्रेनपो कादेला सुरक्षारी खर्दिबा सुरक्षा कर्मी पिएसोदा दिम थेन राङ्लान गेरी लगाइदिबा उजुरी खाबा बिबान चुराङबा सुरक्षा कर्मीदा निश्रा नाङ्री याइसी पुइबारी पाङबा मुला ब्लोन खाङसे कागुर छिपान ग्रेन थेन ग्रेनपो कादेला सुरक्षा व्यवस्थापन गेविधि 2081 दा नाङसी खटाइदिबा सुरक्षा कर्मीदा राङ्लान दरबन्दी मुबा घेजाङ्री याइसी पुइबारी ब्लोन खाङसे चु घामला सुरक्षा निकायदा पाङबा हिनला सुरक्षा पिनबारी खटाइदिबा मिनिदा जिम्मेवारी ग्याम तेसी राङ्ला दिम्ला गेरी थान्बा ताम खाबा लिचा ब्लोन खाङसे चु घे तिबा हिनला दिम्लोन खाङला सुङबोन थेन रोलोन आनन्द काफ्लेसे तेस्युबा कागिरी ठिम्दा नाङसी सुरक्षा कर्मी थान्बा कादेदा कारबाही लाबा बिसी पाङबा मुला खालाइसे चुरङबा लाबा मराङसाम स्याप्साम उजुरी थेन सूचना पिनबारी ब्लोन खाङसे 98 5 60 603 नम्बर सम्पर्क लाबारी पिनबा मुला उज्यालो नेपाल पार्टीला चोहो कुलमान घिसिङसे दातेला सरकारदा ज्याबा घे लाबारी माइजी बिसाम रो लातोला बिसी सुङबा मुला तिनी चितवनला भरतपुर एयरपोर्ट रि साङ्गिर बोन कादेथेन लेङ्गोला सिउबान चोहो घिसिङसे सरकारसे तिलाई ज्याबा घे लाबान मुबासे मोकोनसे रो लातोला बिसी सुङबा मुला सरकारसे सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण थेन बन्द ताबा उद्योग कादे सेङबा ताम्री लाबा भङ्दा राङसे ज्याबा मानबा मुला बिसी चो घिसिङसे सुङबा मुला
दिम्ब्लोन खाङसे सशस्त्र प्रहरी बल्ला प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी बम्सी राज दहालदा सेवा ग्याम तेवा निर्णय लाभामुला दिम्ब्लोन खाङला सुङबोन आनन्द काफ्लेसे तेवा कागिरी लानन रेम ठिम्दा नाङबा गे लाभासे दहालदा तिल्मा सेवा ग्याम तेवा हिला गेन्दुनला कारे फिर्क्या बाबारी आताबा ताम कारे फिर्क्या बाबा आरोपरी सरकारसे दहालदा असोज चुई कुला कुनो दान ग्याम निलम्बन लासी घटनाला च्याबा साइबारी समिति शोभा मुबा भोटे कोशी भाल ग्याम तोङ गिक ग्यार्जा ब्लिसे मेन्दो गाचुई निस मिनी सिबा मुला प्रहरी ग्रेन गेजाङला अनुसार चु तिनी स्योला डु ह्यामा धोनाला विवरण हिन्ला रूपा सिबा लुहिरो मोसेबारी डिएनए नमुना किन्बा प्रक्रिया झिन्ना लासी दाते धोना तोङ गिक ग्यार्जा सोम्से सोमची गाला सिबा लुहिरो व्यवस्थापन लाभा मुला तोङगिक ग्यार्जा ब्लिसे सोमची भ्रेला सिबा लुहिरो मोसेबारी खाम्बा आरे बिसाम भाल लिचा तोङ ब्लि ग्यार्जा निसे मेन्दो निचुई मिनी माबा मुला चुराङलासिन भाल ग्याम विस्थापित तोङगिक ग्यार्जा निसे मेन्दो सोमची घिक मिनी दा जोङला लोलो लोलो होल्डिङ सेन्टर कादेरी थान्बा मुला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण से इन्टरनेट सेवाला टाङ्गा लेना लाभा आरे विवान स्वीकृत धार बिमा लाना टाङ्गा किन्बा थेन मिनिदा मार्का शोभा लासी सेवा सेङ्बा कार्यदा कारबाही लाभा बिची पाङबा मुला इन्टरनेटला टाङ्गा लेबा विवान सानगिर बोन कादे से सानगिर फिर्क्या बाबा लिछा प्राधिकरण से दातेन इन्टरनेट थेन इमेल सेवा पिनबा कादे से टाङ्गा लेना लाबारी प्रस्ताव खाबा आरे पाङबान राङ कादे से नोन टाङ्गा लेना लाबारी स्वीकृत पिनबा आरे बिसी पाङबा मुला याम्बुला गोङ्गोबु छार बसपाक्री प्रिबाला धुइरी दिम निबा मिनिकादेदा बिसी टाङ्गा आकिन्ना लुई जाँच लाबारी तिबा मुला याम्बु महानगरपालिकाला महानगर प्रहरी बलसे दिम निबा मिनिदा बिसी टाङ्गा आकिन्ना लुई जाँच लाबारी तिबा किन्ला महानगरसे होजा ग्लारी प्रेसर सुगर थेन रुइबा छिर्बाला मान्नोन पिनबान मुला बिसी महानगर प्रहरी बल छार बसपाक्ला घेनपो महानगर प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश पण्डित से सुङबा मुला पोखरा मोक्युल एयरपोर्ट थेन पोखरा एयरपोर्ट रि हवाई उडान ताबा गाम्री चाङ्गा ड्रोन बेलुन फ्याङना लाबा थेन लेजर लाइट प्रयोग लाबारी आयाङबा ताबा मुला विमानला सुरक्षारी असर लाबारी खाम्बा ताबासे थेराङबा से कादे आलाबारी मोकोन्दा मोइजेन लाबा मुला बिसी पोखरा मोक्युल एयरपोर्टला घ्रेनपो जगन्नाथ निरौलासे सुङबा मुला सिबा दोहोरो दर्ता थेन नागरिकता ख्लाबा लासी तोङ नि ग्यार्जा ढुसे मेन्दो नि मिनिला मिन मतदाता नामाली ग्याम तेबा मुला काभ्रे जोङला मतदाता नामावली अध्यावधिक लाबा धुरी जोङ निर्वाचन गेजाङसे चु मिन कादे तेबा हिन्ला नामावली ग्याम तेबा कादेरी सिबा तोङ गिक ग्यार्जा ब्लिसे मेन्दो नि दोहोरो दर्ता लाबा तोङ गिक ग्यार्जा गिक्से मेन्दो कुचुई भ्रे थेन नागरिकता ख्लाबा मेन्दो नि मुला बिसी जोङ निर्वाचन गेजाङला सूचना अधिकारी नरेश मानन्धर से सुङबा मुला रिग्याम बाबा श्यामु चामा सोम दिङला झाझा कोला सिबा मुला दाङला गडवा गाउँपालिका गिक वन घुस्री दिम ताबा सोम दिङला लक्ष्मी माझी सिबा हिन्ला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ दाङला प्रहरी नायब परीक्षक हेम बहादुर केसी से सुङबा मुला केसी से सुङबा अनुसार गडवा वन घुस्री दिम ताबा ऋषि माझीला मृङ निचुई डु दिङला सुमित्रा माझी थेन थेला जामे आखाम्बा ताबा मुबा याम्बु नाङला लोलो लोलो ग्ला ग्याम मोटरसाइकल यो लाबा मार मुई भ्यानबा थेन यो लाबा आरोपी प्रहरी से आयन माझी समूहला मेन्दो सोमदा चुङसी सार्वजनिक लाभा मुला समूहला नाइके सिन्धु लीला मरिन गाउँपालिका घाला निचुई डु दिङला आयन माझीला छ्याम मोकवानपुरला बकैया गाउँपालिकाला सोमची ली दिङला राकेश थिङथेन सोमची डु दिङला मनोज कुमार मोक्तान्दा चुङबा मुला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला बर्दियारी तारङा सेबारी गान्धीरी निभा धुरी गोहिसे आक्रमण लामा मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर सोम कोठिया घाट चिबा गाँचुई धिङला
पुष्पा लामी छाने सिबा मुला लामी छाने तिलमा स्योरी तारङा सेभारी गेरुवा घान्दिरी निबा मुबा बिसी प्रहरी से पाङबा मुला स्यान सिबान मुबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला।

0: ई रेडियो नेपाल ठीक रविन्द्र मिश्र सौ मैथिली में समाचार सुनल जाए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल हमरा सबक शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी के केवल वर्तमान के लिए मात्र नहीं भविष्यक चुनौती आ अवसर के लिए सेहो तैयार कल जबाक बात बतौलन। राष्ट्रपति पौड़ेल पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय अस्सीम वर्ष प्रवेश तथा हीरक महोत्सव 2083 समारोह के आय संबोधित करते ई धारणा व्यक्त कलन। ओ परिवर्तनक संग हमरा सबक आधारभूत मानवीय मूल्य सब और सुदृढ़ हेबाक लेल आवश्यक रहल बात पर जोर दलन। विद्यालय ज्ञान शिक्षा चेतना जागरणक संगे राष्ट्रक भविष्य निर्माण करबाक आधारभूत संस्था रहल हुनक कथन छल। विद्यालय कक्षा कोठा में केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान मात्र प्रदान नहीं होइत अछि, एहिसँ अनुशासन ईमानदारिता परिश्रम सहिष्णुता सदाचार देश प्रेम सामाजिक उत्तरदायित्व सन जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सब सिखाओल जाइत अछि। ओ आजुक विद्यार्थी काल्हिक शिक्षक चिकित्सक इंजीनियर प्रशासक उद्यमी राजनीतिज्ञ वैज्ञानिक तथा राष्ट्रक जिम्मेवार नागरिक भेल उल्लेख कयलनि। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल फिजी आ टुभालू में आयोजित जलवायु परिवर्तन संबंधी उच्च स्तरीय प्री कोप लीडर्स इवेंट में सहभागी होबाक संगे ऑस्ट्रेलिया का औपचारिक भ्रमण संपन्न कर स्वदेश वापस भेला अछि। भ्रमण के क्रम में ऑस्ट्रेलिया नेपाल में हाल ही भेल विनाशकारी बाढ़ सँ प्रभावित क्षतक राहत पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणक लेल 15 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर अनुदान सहायता घोषणा कयलक अछि। एकर संगे बाढ़ विपद प्रति कार्यक लेल ऑस्ट्रेलिया घोषणा कयल कुल सहायता 26 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर पहुँचल। मंत्री खनाल जानकारी देलनि स्वदेश वापस भेलाक बाद भ्रमण के उपलब्धि संबंध में जानकारी दैत मंत्री खनाल नेपालक जलवायु संवेदनशीलता के अंतर्राष्ट्रीय मंच में उजागर करबाक न्यायोचित जलवायु वित्त परिचालन करबाक ऑस्ट्रेलिया संघक द्विपक्षीय संबंध के थप सुदृढ़ बनेबाक में महत्वपूर्ण भ्रमण रहल बतौलन। अगला नवंबर में टर्कीक अंटाल्या में आयोजन होने वाला जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ संरचना महासंधि 31वां सम्मेलन कोप 31 के लिए राजनीतिक सहमति निर्माण करबाक तथा विश्वव्यापी जलवायु एजेंडा के आगू बढ़ेबाक उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया फिजी टुवालू के सरकार प्रमुख सभक नियंत्रण में आ निमंत्रणा में मंत्री खनाल भ्रमण कहने छलथि। भ्रमण के क्रम में मंत्री खनाल यही 6 अक्टूबर में फिजी के नाडी में आयोजित प्री कोप लीडर्स प्लेनरी के संबोधित करते हिमाली तथा प्रशांत महासागर के टापू राष्ट्र सब जलवायु परिवर्तन कारक समान प्रकृतिक जोखिम सामना करल उल्लेख कने छलथि। ओ हिमनदी पगलबाक आ समुद्री सतह सेहो बढ़बाक समस्या एकटा विश्वव्यापी जलवायु संकट के परस्पर जोड़ल गेल पक्ष भेल बतबैत हिमालय से समुद्र धरि के राष्ट्र बीच सहकार आवश्यक रहल बात पर जोर देने छलथि। कोप 31 के लिए नेपालक 4 प्राथमिकता प्रस्तुत करते मंत्री खनाल विश्वव्यापी तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस में सीमित रखबाक लक्ष्य प्रति के प्रतिबद्धता ऋण के भार नहीं थब्बा सन अनुदान में आधारित अनुकूलन वित्त हानि तथा नुकसानी कोषक प्रभावकारी परिचालन आ सगरमाथा सँ समुद्र धरि साझेदारी के विकास पर जोर दिलन। 16 श्राद्धक अंतिम दिन आइ काठमांडूक पशुपतिनाथ मंदिर स्थित बागमती नदी किनार में दिवंगत पितृक स्मरण में श्राद्ध तर्पण तथा पिंडदान कलक अछि। पितृपक्षक अंतिम दिन अपन दिवंगत पितृ प्रति श्रद्धा व्यक्त करैत ओ सब आत्मक चिर शांति कामना करबाक लेल भिनसर सँ पशुपति क्षेत्र में श्रद्धालुक भक्तजनक नीक उपस्थिति देखल गेल छल। हिंदू धार्मिक परंपरा अनुसार सूर्य श्राद्धक अवसर पर दिवंगत पितृक स्मरण में सम्मान तथा आत्मा के शांति कामना करते श्राद्ध तर्पण आ पिंडदान करबाक प्रचलन अछि। पंडित नंद राम लुइटेल श्राद्ध दिवंगत पितृ प्रति श्रद्धा आ सम्मान प्रकट करबाक धार्मिक कर्म भेल बतौलन। हुनका अनुसार सूर्य श्राद्धक अवसर पर पितृ के आत्माक शांति कामना करते श्राद्ध तर्पण तथा पिंडदान कयल जाइत अछि। विजयादशमी निकट अला पर जनकपुर धाम स्थित प्रसिद्ध रायदेवी मंदिर के आकर्षक रूप में सजाओल गेल अछि। दशहरा में होमय वाला विशेष पूजा आराधना आ भक्तजनक भीड़ के ध्यान में रखित मंदिर में सजावट के संगे सुरक्षा तथा दर्शन व्यवस्थापन के तैयारी सेहो तीव्र कयल गेल अछि। मिथिलाक धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचानक संग जोड़ल गेल रायदेवी मंदिरक मुख्य प्रवेश द्वार सँ गर्भगृह धरि रंगीन बत्ती फूलमाला आ तोरण सँ सजाओल गेल अछि। राजा जनकक कुल देवी के रूप में श्रद्धा कयल जाय वाला राजदेवी मंदिर में दशहरा के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना होइत गेल अछि। राजदेवी मंदिर में विशेष का महाअष्टमी, महानवमी आ विजयादशमी के दिन भक्तजनक उल्लेख भीड़ लागत अछि। मिथिला क्षेत्रक विभिन्न स्थानक संगे अन्य जिला आ भारत से सेहो श्रद्धालु लोकनि एहिठाम दर्शन तथा पूजा आराधनाक लेल आयल करैत छथि। महावीर युवा कमेटी के अध्यक्ष दीपक कुमार साहक अनुसार मंदिर में पूजा आराधना आ दर्शन के व्यवस्थित बनेबाक लेल विभिन्न समिति तथा उप समिति गठन का जिम्मेवारी बाँट फाँट कयल जानकारी देलनि। नेपाली कांग्रेसक 15 महाधिवेशन सँ सभापति में निर्वाचित गगन कुमार थापा नागरिकक विश्वास जितबाक सन पार्टी के रूपांतरण करबाक बात बतौलनि अछि। सभापति में निर्वाचित भेलाक बाद आइ पार्टी कार्यालय सानेपा में उपस्थित कार्यकर्ता तथा समर्थक के संबोधित करैत सभापति थापा स्वयं प्राप्त कयल जिम्मेवारी के अधिकार नहि भ जवाबदेहिताक रूप में लेल गेल बतौलनि। विशेष महाधिवेशन पश्चात भेल 15 महाधिवेशन सँ नया नेतृत्व चयन भेला पर मात्र पार्टी परिवर्तन नहीं हवा खुनक कथन छल। आ पार्टी काज करबाक शैली बदलबाक आ जिम्मेवारी तथा जवाबदेहिता बढ़ाओल जेबाक ओ बतौलनि। सभापति में प्रतिस्पर्धा कयल श्याम कृष्ण खड़गे के धन्यवाद दैत ओ लोकतांत्रिक अभ्यास सँ पार्टी के जीवंत बनेबाक बात बतौलनि। खड़गे सहित प्रतिस्पर्धा में रहल सबके संगे लऽ कऽ आगू बढ़बाक हुनक कथन छल। महाधिवेशन सँ पारित प्रतिवेदन सब अध्ययन का एक सप्ताह समय दल गेल। जानकारी दी थापा सभक सुझाव प्राप्त भेलाक बाद पहिल केंद्रीय कार्य समिति बैठक सँ कार्ययोजना बनेबाक बात बतौलनि। कानून सबके लेल समान हेबाक उल्लेख करैत ओ कोनो व्यक्ति गलती कयला पर ओकर जवाबदेहिता संबंधित व्यक्ति लेल जेबाक बात बतौलनि। मुगलिंग काठमांडू सड़क खंड अवरुद्ध भेलाक बाद हेटौड़ा होइत काठमांडू आन जान करवला सवारी साधन के चाप बढ़ला पर दशहरा के यात्री वाहक सवारी साधन के प्राथमिकता द आवागमन के व्यवस्थापन कयल गेल अछि। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय मकबानपुरक प्रमुख रमेश बिष्ट यात्री वाहक सवारी साधन के पहल प्राथमिकता में रहकर त्रिभुवन राजपथ सहित वैकल्पिक सड़क मार्ग में सवारी व्यवस्थापन कयल जानकारी देलनि। हुनका अनुसार यात्री वाहक सवारी साधन पश्चात ईंधन तथा भोजन बनाबा वाला गैस रहल सवारी साधन के प्राथमिकता देल गेल अछि। धादिंग के गलछी क्षेत्र में सड़क अवरुद्ध भेलाक बाद हेटौड़ा होइत काठमांडू आन जान करवाला सवारी साधन के चाप बढ़ल ओ बतौलनि। त्रिभुवन राजपथ के संगे घुमती समय भारी सवारी साधन के आन जान में बाढ़ में कठिनाई भेलाक कारण बेराबेरी प्रणाली मार्फत सवारी संचालन कयल गेल अछि। सशस्त्र प्रहरी बल परसाक विभिन्न स्थान सँ 14,36,635 टका बराबर के समान आ दूटा ई लोडर बरामद कयलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल 13 गण हेडक्वार्टर परसा सँ खटल टोली बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 गंडक चौक सँ बिल बीजक बिना दूटा ई लोडर में लोड कऽ लाबैत काल 3,34,945 टका बराबर के कपड़ा भाड़ा बर्तन तथा किराना सामान बरामद कयल। गणक सूचना अधिकारी सूरज छत्री जानकारी देलनि। सामान में प्रयोग कयल दूटा ई लोडर के मूल्य 10,00,000 टका रहल। प्रहरी जनौलक अछि बरामद सामान ई लोडर मिलाकर 13,34,945 टका बराबर के सामग्री कार्यवाहीक लेल बीरगंज भंसार कार्यालय में बुझाओल गेल अछि। एहि तरहें बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 इनरवा स्थित सीमा क्षेत्र में सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा गुल्म बीरगंज सँ खटल टोली भारत सँ भंसार छली नेपाल दिस लाबि रहल 1,01,690 टका बराबर के किराना तथा कॉस्मेटिक सामान बरामद कयलक अछि। मैगदीक अन्नपूर्णा गांव पालिका वार्ड नंबर 8 में रहल महावीर गांव भूस्खलन के कारण विस्थापित भेल अछि। 30 परिवार के बसवास रहल महावीर के सब बासिंदा अ भूस्खलन के कारण गाम छोड़बाक लेल बाध्य भेल समाचार प्राप्त भेल अछि। अ महावीरक बासिंदा सेहो रहल अन्नपूर्णा गांव पालिका वार्ड नंबर 8 के वार्डाध्यक्ष खम बहादुर गरबुजा। भूस्खलन सँ प्रभावित सब सिरुआ बाड़ी में अस्थायी शिविर बनाकर बैसबा आ बैसा लागल। जानकारी देलनि बस्ती सँ नीचा भूस्खलन गेल आ गाम के बीच में सेहो भूस्खलन चिरा चिरा ओहिठाम कह दिल ओ बतौलनि। वार्ड के विपद व्यवस्थापन समिति द्वारा तैयार कयल गेल प्रतिवेदन अनुसार महावीर सहित अन्नपूर्णा 8 वार्ड में साबिक रामचे गांवीसक 52 परिवारक 126 गोटे विस्थापित भेल बतौलनि। हाल देश में पश्चिमी न्यून चापे प्रणाली संगे मनसूनी वायु के प्रभाव रहले छ। लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित देशक पहाड़ी हिमालय भाग में साधारणतया बादल लागत आ बाकी भूभाग में आंशिक बादल लागल। बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेशक किछ स्थान तथा कोसी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशक दूटा स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का वर्षा भऽ रहल अछि। आइ राति देशक हिमालय पहाड़ी भूभाग में आंशिक बादल लागत। तराईक भूभाग में मौसम मुख्यतः सफा रहत। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्रक महासचिव एंटोनियो गुटरेस इथोपियाक उत्तरी क्षेत्र में पुनः शुरू भेल हिंसा रोकबाक लेल संबंधित सब पक्ष सँ आग्रह कयलनि अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनने छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रीय रेडियो राष्ट्रको संचार।